0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहने लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थ उचार,
0: तिना का पद है खालसा। तो इस तरह इन्हों का असि महाराज सच्चे पातशाह कहने अर्थ जिहड़ा है बना के तुहानू सुना दिता कि खा ल ते सा, ये तीन अखरां दे विच इन्ना कुछ छुपया होया कि जिहड़ा कोई बंदा समझ नहीं सकता। जिवें कहा सी खंजोगी लंघोग और ग्रहणे मांझ संग्रहणे मांझ, इहदा ये अखर विच किन्नी डूंघाई है। जां खंजोगी कहिंदे खा खालसा जोगी रूप होवेगा, ते खालसा जिहड़ा होवेगा लल्ले तों कहिंदे लंघोग भाव खालसा। दो चीजां हो गईयां, एक जोग होवेगा भोग होवेगा खालसे कोल, और संग्रहणे मांझ इकट्ठा करेगा खालसा नाम। इस तरह ही सतगुरु महाराज कहिंदे ने इन्हां तुकां दे विच पद खालसा दे अखर अखर ते अर्थ कीते जिहड़े ने ना, वह इस ढंग दे नाल कीते हन। तो जिवें कहिंदे ने जो है खंजोगी, तो जोगी हो गया लंघ भोग मैं जां संग्रहणे मांझ, तां इस तरह कहिंदे ने खालसा जोग ते भोग दोहां नूं मिल के विचरेगा। ते खंग दा अर्थ हुंदा नभ, नभ तो मुराद हुंदा चिदाकाश। लंघ भोग दा अर्थ हुंदा लंपट तो पाव, इह संसार दे जिहड़े भोग दे अर्थ इस प्रकार कहना। संग्रहण दा अर्थ है इकट्ठ करना, मेल करना। इस तरीके नाल इह सारियां चीजां

0: जी कहते ये पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यो कहते समाधि ला ली गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पर सुने कलयुगता का दास।
0: जिहड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा ये साखी नूं सुने कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहिंदे पाप उहदे भज जाणगे भगती उहदे हिरदे जागेगी तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी जिहड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहणा सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए बे अमर छको दाड़ियां जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही वचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो अमर छको गुरु वाले बनो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी सारियां चीजां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग दे जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जिहदे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी उह वाहिगुरू करन लग जाणगे भाई किहने कहा महाराज जी ने कहा। यह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए ये कहण दा की फायदा फिर की बनेगा गात्रा पा के की बनेगा अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो सारियां गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते फिर भी कहिंदे आ गल क्यों आ किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहिंदे जे सारे जने इक्को ही वचन मान लो उसे विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा वचन

0: काका ऐ करी मैं रुपया दऊंगा 100 दऊंगा मैं उत्थे आके जब जगराता होगा ना मैं आऊंगा उत्थे नाल तेनू रुपया भी 100 दे के जाऊंगा देखांगे जगराता भी असीं भी दर्शन करावांगे फिर भज गए फिर खड़े ही नहीं है उत्थे तो इस करके लोग पर्चियां छपाउंदे रसीदां छपाउंदे ने थां थां दे उत्ते उन्हां तों सतगुरु साहब धान करदे ने कि लोकी लुट्टण नूं चढ़नगे तुहानूं बाणे पाउणगे सिक्खी वाले ते करनगे खोटे कर्म उन्हां कोलों सावधान रहना है।
1: मड़ी मसाणी गोर न मानै
0: महाराज कहिंदे मड़ियां नूं नहीं मनणा जा के मसाणियां हुंदियां ने कबरां नूं जा के मनना गोर कबर जिहड़ियां ने कबरां ते मसाणियां जिहड़ियां ने जा के जिथे मड़ियां मुड़ियां संस्कार करदे ने उत्थे लोक रात नूं जांदे ने ये जिहड़ियां मड़ियां हुंदियां ने आम लोकां दी हुंदियां। हुण एक चीज होर आ जांदी वी जिवें सिंघां ने शहीदियां दित्तियां ने जिवें 40 मुक्तियां दा संस्कार होया कई लोग उन्हां नूं नाल ला देणगे फिर तां जी उह वी मड़ी है जी उह कित्थे उह सिंघ कित्थे मड़ियां ते फिर जिथे शहीदगंज श्री आनंदपुर साहब है पावन पवित्र स्थान शीशगंज साहब श्री जो है दिल्ली विखे है महाराज का स्थान है ते इस तरह के जिहड़े स्थान ने तां साडे सत्कार योग ने ते बाकी जिहड़ियां दूसरियां स्थानां दी गल कीती है कि मड़ियां नूं मनना

0: सुपते निसमय सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी का है किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच इह गल इस तरह नहीं है इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गद के आख

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक तो बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़िया गल्लां करनिया, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च प्रवृत्त होइए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा नौ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताई पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुत्र।
1: बाणीए अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने वो अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोगों नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे किहड़ा मेहनत करे किहड़ा कम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जट्टा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटा लंबिया लंबिया बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी उह विछा लैणी वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे। देखण नूं संत महाराज होणगे ते अंदरों कम जिहड़े ने उह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लागे।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोड़ भी नहीं ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जावेगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा कि दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने उह संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां ध्यान दे धोखे

0: अत्यंत ही भैड़ा सुभाव पलटन वास्ते अते भूत प्रेत डाकनिया हुंदियां ने जिहड़ियां अथवा डीट हुंदी नजर लगनी ये मसले आम तौर ते दबा दिते जांदे ने ये कोई चीजा नहीं हुंदियां ये फालतू गल्लां ने पर फिर लोग उधर नूं क्यों भजदे ने सो ऐसियां चीजां दा प्रभाव गुरबाणी अंदर गुरां ने मन्निया है जदों गुरु ग्रंथ साहिब की कसवटी ते सब चीजां आ जांदियां ने फिर मुनकर नहीं होना चाहिए समका उन्हों का डट के आपां नूं मुकाबला करना चाहिए गुरबाणी के नाल ना कि इधर उधर भटकना चाहिए महाराज ने इत्थे जपजी साहब का इसे करके महात्म दस्या
1: मन जीतन रण मैं धरा राजकाज सुख
0: राजकाज दे विच मैदाने जंग जान दे विच राजनीति दे विच बाणी तो हर जगह ही सहायता करती है जेड़ा मर्जी महाराज जी तो आपां मंग लईए
1: मिलने गिलने बंद मैं राजयोग उत्साही
0: बंद मैं बंद हुंदा रिश्तेदार रिश्तेदारां नूं मिलना गिलना उह तां आपां नूं पता ही है कई चीजां दा भी जदों बरात आउंदी है उदों शब्द पढ़दे हम घर साजने आए बाणी पढ़दे हैं आनंद कारजां विच फिर लावां दा पाठ पहला कीर्तन हुंदा है महाराज कहिंदे जपजी साहब भी पढ़िया करो जपजी साहब दा पाठ जिहड़ा है ये पढ़ना रिश्तेदारी च मिल जाना राजयोग दे विच कहण तो भाव कि एक चिंता मणी हुंदी है चिंता दूर करदी है एक काम तेन गऊ है उहदे कोल कोई इच्छा कर लो पूरी करदी है एक कल्प ब्रिछ है पर सतगुरु ने कहा कि इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाकै बस है काम तेना काम तेन जपजी साहब दे बस विच ही है फिर आपां काम तेन नूं कहनूं देखना है जां कल्प ब्रिछ वल कहनूं देखना है जां किसे होर वल क्यों देखना है महाराज कहिंदे फिर भाई जिहड़ा जपजी साहब पढ़दा है उहदा तां सीधा ही मतलब है कि उहदियां सारियां इच्छावां चाहे वह रजोगुणी है चाहे वह सतोगुणी है चाहे वह भगती है चाहे वह योग विराग ज्ञान उम्र का वाधा मंगिया चाहे घर का कोई काम है चाहे परलोक का कोई काम है सारे कारजा विच जपजी साहब की बख्शिश हुंदी है
1: इन कारज की अटक मैं पंच पचीसा जाप
0: हुण इन कारजा विच जिहड़ा अड़िका पै जांदा है सो इस करके कहिंदे ने मूल मंत्र दा ही मुख है कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है ना वह तुसीं अभ्यास जां तां समां रख के करो बई रोज घट्टो घट दो घंटे मूल मंत्र मैं पढ़ना है जां फिर नवे बंदे लई माला बई माला कुछ रखो बई मैं इन्नियां माला जिहड़ियां ने हर रोज करनियां ने घट्टो घट दस ग्यारह पंद्रह भी पच्ची माला मूल मंत्र दियां अभ्यास वजों करनियां ने जे आपां थोड़ा करदे हैं मूल मंत्र ते आपां कम्मां दी इच्छा बहुत करदे हैं इस करके क्योंकि गृहस्थी के कार्य ही बहुत ज्यादा होंदे ने तां ते सतगुरु महाराज कहिंदे मूल मंत्र दा अभ्यास जिहड़ा है वह थोड़ा ना करो हर वक्त पंजां प्यारिआं ने तां इही हुक्म कीता जद अमृत छकदे हैं भाई देखो अमृत वेले पंज बाणियां तो पढ़ लईआं हुण बाकी दा समां की करना सुखमनी साहब आसा दी वार ते चलो डेढ़ घंटा लग गया बाकी फिर कहिंदे मूल मंत्र ते गुरमंत्र उठदे बैठदे श्वास श्वास इन्हां दा जाप जिहड़ा करन नूं पंजां प्यारिआं दा हुक्म आपां नूं उही इत्थे दर्साया भई हर वक्त मूल मंत्र दा अभ्यास करदे रहो
1: छत्ती अठत्ती जाप कर लाख अर्ध ते लाख
0: हुण इह जिन्ना कु कारज है कम देखिआ जांदा कम है इन्ना कम है 5000 मूल मंत्र है 25000 दा जाप है 36000 36 अखरा भाव पुरातन समय विच 36 अखरा नानक होसी भी सच तक है 25 अखरा जिहड़ा उह जाप गुरप्रसाद तक है इन्हां चीजां नालों हट के आपां इको ही गल करिए कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है जिहड़ा पंजां प्यारिआं ने बख्शिश कीता है इहदा जे चलो जे तुसीं इह कहो भी इह तां बहुत ज्यादा सत हुंदा नहीं इन्ना तां फिर घट्टो घट्ट 5-6 माला रोज कर देनिया चाहिए या 11 माला ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਪਾਠ ਜਾਂ 5 ਪਾਠ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ

कमन कमन गुण कह कह गावा, तुम साहिब गुणी नदाना, तुमरी महिमा वर्णन सको।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

बोले तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै

आधार सत नाम नु आधार बनाओ, परमेश्वर की बंदगी नु आधार बनाओ। आओ हुण रीढ़ की हड्डी सिद्धी करो, समा दौड़ चलिया है। मेरा सतगुरु कृपा करे कुछ समा नक की कुरुंबड़ी ते सुरत टका के अंदरले विचार बंद करके जप के वेखो, मेरे सतगुरु का अमृत डोलन लग पैंदा अंदरों। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। ये जपया करो अमृत वेले उठ के, अमृत वेले खुराक खाया करो। सर्व रोग का औखद नाम बोलो, सर्व रोग का औखद सारिया बीमारियां दी दवाई जे सतनाम श्री वाहिगुरु। जेड़ा रब दा नाम आ, अवर अपाव सब त्याग गया, दारू नाम लिया छड़ दियो सारे अपा करने। अपन बड़े मिलदे ने, ओ जी औलाद आखे नहीं लगदी, ते लागो गवांडी की सलाह देंदे, की करो कोई उपा करो। अपा शब्द वरतदे ना इथे, गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सगल अपाव सब त्यागया, अवर अपाव सब सारे अपाव करने छड़ दिते। आख्या की कीता फिर तुसी?

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरलाए ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत आ, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईआं। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिआ गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हिकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर, कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनण वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास, इहनू फाइयां लैके जिहड़े फंड वाले ने उह मेरे सतगुरु ने लिखिआ वा, पंजाह ने लाख अहेरी एक जियो। इत्थे आख्या लखां शिकारी ने मगर एक सिखिआ, केता बंचू काल किन्ना क चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों। जे तुसी सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसी एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया, ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा इहनू खतरा ते कोई नहीं, इहने मिटना ते संसार विचों है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आउण वालियां सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरियां आ गईयां जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हां तों बचोगे कि तरह। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नूं खतरे चार चपेरे पै गए ते इहदा बचा की है। इक्को ही बचा वा कि तुसी सिमरन अभ्यासी बन जाओ, तत्ती वाओ ना लगे ही कदों जदों पार ब्रह्म शरण आई। इहदी शरण विच आ जाओ, सिखो साडे दुश्मन भी तां बने ने, असीं तां अज तक नुकसान विच गए आ, असीं भी गुरु नानक दा पल्ला छड दित्ता। ते आपां जदों मरदाने ने वेख्या महाराज इनियां अनेरियां आ रही ने उडा के लै जाणगियां, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहण लगे मरदानिया इह अनेरी तेरा कुछ नहीं वगाड़ूगी। आख्या मारक इनी अग दी अनेरी आ रही उडा के लै जू, मरदानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहेगुरु ना रुकिया ते अनेरियां तेनू कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नूं बेनती, तुसी पंथ रूप विच बैठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानूं पहलों सचेत कर रहा। जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आउण वालियां ने कई बंदे सोचदे, कई नहीं सोचदे, कई कहिंदे खाना पीना हसना सौना बस इन्ना कुछ ही है, मगर थोड़ा जिहा सुचेत हो जाओ। कोई धरती की विपदा नहीं जे जिहड़ी इस वेले पंथ दे दुआले नहीं होई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जे सारियां मुसीबतां तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथों तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जिहड़ी एड्स है ना, यह सिखा तो फैली। यह छोटा जिहा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, यह दुनिया च बदनाम करनू केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डिया ते खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी। जो उन्होंने अखबार विच लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जिहड़ी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखा तो फैली। गुरमुखो इहदे तो बचना कितना है, सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखां विच घट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जण समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझण लग पणगे, मगर साडे चेहरे तो हुण गुरमुखता ही लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नूं बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मोढे नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, बचन दा करन नूं बहुत दिल करदा। फिर सही साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नूं नहीं पाया, धौली रावे कोए, धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावया ना, जिन्हां ने काले विच काले वालां विच जदों भज सकदा, बह सकदा, उठ सकदा, नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर दी बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलने लगा है। हांजी
1: कल साई स्यो पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सुचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यो पिरहड़ी। फरीदा उस मालक नाल प्रेम कर ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ

0: नमो सर्व गौणे गौणे गौने गौण करना सारे दे घर जांदा है। नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व देसे नमो सर्व सारिया देसा सारिया भेसा में रब ही तुरै फिर तेरे को आखे मसीह रिंदा है। अल्लो एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा यह मुसलमाना नु कह के हुण हिंदू की गल करता है। कहिंदे हिंदू मूरत नाम निवासी हिंदू कहिंदा है कि मूर्ति च बैठा है मगर बाबा कबीर क्रांतिकारी भगत होया है। कहिंदा दो मैं तत ना हेरा मेनू दोवां विचों तत नहीं लभ्या फिर आख्या फिर तुसी कित्थों कहिंदे अल्लाह राम जीवो तेरी नाई तू कर मेहरमत साई दखण देश हरी का वासा पच्छम अलो मकामा दिल में खोज दिले में खोजो यही ठौर मकामा। ओ दुनिया दे लोको अपने दिल चो रब लभो बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परे शानी माए क्यों परेशानियां विच पियावा रब नु कित्थों लभदा फिरदा है। काहे रे वन खोजन जाई जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े। एक बार तीसरे बापू नु पुछ लो एक बार आखो सतनाम श्री तीसरे नु दसो तुसी दसो रब बारे कहिंदे सब किछ घर मैं बोलो सब किछ बाहर नाई। आ सुन लिया हुण एवें मास्टर नु फोन करदे फिरदे हो एवें होर ना पिछिया पासे फोन करदे फिरदे हो सब किछ घर मैं बाहर नाई बाहर टोले सो भरम भलाई जेड़ा बारो लभदा ओ ते भरम विच पिया वा। बाबा जी भी ये बचन करते ने जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े वसी रब हे अलिए जंगल क्या ढूंढे की जंगलों विचो लभदा फिरदा है। रब ते तेरे घर रहिंदा है रब ते तेरे कोल रहिंदा है आ वेख तेरे अंदर बोलता रब ही रहा है सबे घट राम बोले फिर बोलो सबे घट रबा बोले राम बिना को घट घट मैं कौन रहिंदा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह पुछ लो जी हर शरीर विच कौन रहिंदा है ते कहिंदे घट घट मैं हर जू वसे। कमाल दी गल आ गुरु का सिख होके भी रब नू लभण तुरे इहदे नाल दी वध नसीबी वाली गल कोई नहीं। एक थां ते आ नाम लैण तुर पैंदे आपां थां थां तों मेरे साहब नू मेरे बचन अज अमृत वेले चल रहा सी मेरे साहब दा जदों जपजी साहब पढ़ रहे सन ते बचन आ गया जेता कीता तेता नाउ जिन्ना कुछ कीता है की आ नाम ही है विण नाम है नाही को थाओ ते गुरमुखा प्यारा जिथे मर्जी बह जा ते जपन लग पो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु ते जे उथे नाम ना हुंदा ते तू जप कितना सकदो ध्यान दियो जे उथे नाम ना हुंदा जिथे पानी ना होवे उथे पानी पी सकीदे जिथे पानी ना होवे तुसी करियो हो पानी पानी पानी पानी मिलजू जिथे रोटी ना होवे उथे करियो रोटी रोटी रोटी मिलजू। मगर जे नाम तू जपया ते तेनू नाम दा आनंद हो गया इथो सिद्ध हुंदा तू जिथे बैठा वा नाम उथे भी हैगा है विण नामे नाही को जिथे मर्जी बह जा पहाड़ ते बह जा समुद्र अगे कहदा जंगल च बह जा जिथे मर्जी बह जा जेता कीता तेता नाओ विण नामे नाही को तू जपदा ही नहीं तू उस परमेश्वर नू याद ही नहीं करदा। हां जी अगला वचन दसो जी
1: फरीदा इन्नी निक्की जंगी है थल डूंगर भवे ओम।
0: हुण इस शरीर दी हालत कहिंदे ने कहिंदे फरीदा वेख एक दिन ए सी इन्हां निक्कियां निक्कियां लत्तां ते निक्के निक्के कदमां दे नाल ए शरीर जदों जवानी विच सी ना थल डूंगर भवे ओम थलां विच ते बड़े डूंगर कहिंदे पहाड़ नू मैनू नहीं सी पता डूंगर किहनू कहिंदे ने ते मैं सोचना डूंगर किहनू कहिंदे ने। एक दिन बंबे कथा करन गया ते इक कहिंदे जी प्रशादा छकण जाणा है मैं जी चलगा कि किथे कौना है कहिंदे डूंगर पाड़े उथे एक जगह का नाम है डूंगर पाड़ा पाड़ा कहिंदे ने कलोनी नू ते डूंगर कहिंदे ने पहाड़ नू ते मैं कहा जी इहदा अर्थ की है डूंगर पाड़े का कहिंदा जी पहाड़ दे उत्ते साडा घर है ना इस करके उहनू कहिंदे डूंगर पाड़ा। फिर पता लग गया होर भी शब्द आपां पढ़दे आ घट आव घट डूंगर घणा एक नुरगुण बैल हमार पढ़दे आ ना रमैये सो मेरी बेनती मेरी पूंजी राख मरार ओ भी शब्द विच डूंगर शब्द आया है। इथे भी कहिंदे ने इन्हां निक्कियां निक्कियां लत्तां दे नाल मैं सारी धरती घुम आउंदा सां पहाड़ घुम आउंदा सां इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर भवे ओम सारा दुनिया घुम आउंदा सां मगर अज की हो गया। हां जी
1: अज फरीदा कुजड़ा कोहा थी ओम
0: अज हुण जिहड़ा लोटा पानी वाला वा ना कुजा पानी वाला ਆ ਦੋ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ

कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते औगण वाली नूं ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने औगण यारी कंत न पावे बोलो औगण यारी सारे बोलो जरा औगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी औगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उहदा सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहना नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणा दियां मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वोहे

0: देखो कितने प्यारे चक्कर, खंड, निवात, गोड़, अगे माखियो, माजा, दुध, ये सारिया चीजा आपा किसी ना किसी समय चख के वेखिया। शक्कर खा के वेखी, खंड खा के वेखी, निवात का मतलब मिश्री खा के वेखी, माखियो का शहद खा के वेखिया, माझा दुध पी के वेखिया। मेरे सतगुरु ने सारिया चीजा का ना लैके जिन्हां ने चखिया उन्हां नूं इस गल का पता लगा। आखो सतनाम श्री। ये गल उन्हां ने आखे अलौती का जैसे पया बरेडा, बोलो अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, जिन पिया तिन जानिया। बाबा कबीर कहिंदा है गर्मी होवे ठंडा पानी होवे ते मिश्री दा बनिया होवे शरबत मिश्री दा, अलौती का जैसे भया बरेडा, मिश्री दा शरबत होवे एडा सरबलो दा कौला भरिया, ते फिर जिन पिया तिन जानिया। ये ते जिन्ने पीता है ओनू पता ना फिर मिश्री दा शरबत किन्ना आनंद देई है। इथे भी बाबे फरीद ने जदों उस परम पिता परमेश्वर दी बंदगी दा रस चख लिया, ओदी मिठास वेख ली, ते हुण कहिंदा नहीं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध, ये सारिया चीजा हे वाहगुरु बड़िया मिठिया ने खा के वेखिया ने। हां जी अगे जी।
1: सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद।
0: बड़ा प्यारा बचनिया साहब जी कहने ने सबे वस्तु मिठिया। इथे खिलारो एक बार सारे आखो सबे वस्तु जिको आप कहने ए ते गल ठीक है, ए ते गल पर अगे ना पर आ भी ते गल है, आ गल जेड़ी है होर आनंद दी आ। इथे भी मेरे सतगुरु कहिंदे ने इहदे विच कोई शक नहीं कि शक्कर मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि खंड मिठी नहीं, इहदे विच कोई शक नहीं कि किते शहद जेड़ा वा माखियो दा ओह किन्ना मिठा है, इहदे विच कोई शक नहीं कि माझा दुध किड्डा प्यारा है। एक बार भाई नंद लाल साहब नूं किसे गुरसिख प्यारे ने पुछ लिया कि तेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जदों मुंह दे विचों बोलदे ने उन्हां दा एक एक बचन किन्ना क मिठा है। आखो सतनाम श्री। जरा गज के आखो समा हो चलिया है मेरा गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर के घरां नूं भेजे। आखो सतनाम श्री। जन्मां दे भुखे आयो गुरु नवाज दवे। आखो सतनाम श्री। तेरा सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलदा वा किन्नी क मिठास आ। ते भाई नंद लाल साहब ने छेती नाल आखिया जिन्नी एक खंड दी बोरी मिठी, शक्कर दी बोरी मिठी। ते फिर छेती नाल कहिंदा नहीं नहीं मैं गलत कह बैठा, मैनू माफ करियो मैं गलत कह बैठा। उन्हें कहा दस फिर किन्ना क मिठी है। उन्हें फिर एक बोरी दो बोरियां करदे करदे कहिंदे ने आ दो जहान लोक ते परलोक शक्कर दे बन जाण, लोक ते परलोक शक्कर ही हो जाए। ते जिन्नी ओदी मिठास आ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਦ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਦ। ਹਾਂਜੀ।